0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: आसान महला पहला सोनो बड़ा आख सब कोई के बड़ बड़ा डीठा हुए।

दुख सो क्यों विसरै मेरी माई साता साहिब साता नारा हाओ सती नाम की तेल वड़े आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिनकै आखन पाही वड़ा न हो वै काट न जाए

को होए जिबड़िया पिबड़ तेरी दात जन जन कर कै कीती रात कसम सड़ है ते कम जाते नानक नावै बाज सनातो रागुजरी महला चौथा।

तेरा अंत न पार भरिया राग आसा महला चौथा सुपुरख एक ओंकार सत गुरु प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावे है सब त्यावे है तुझ जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याबो।

पुरख समान एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण अख बखाना जो सेवा है तुझी जा नानक तिन कुरबाना।

चौथा तू करता सत्यार लडसाई जो तो पावे सोई थीसी जो तो देह सोई हम पाई रहा सब तेरी तू सब नित्याया जिसनु कृपा करे तन नाम रत्न पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़े आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाना हर गुण सदही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवरण कोए तू कर कर विख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर्व रड़ै पै निर्वासा पानी पाव कुतन है किया पंक जो मोह पाग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले

आज संग्रह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ो कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चुन सत्तर हमारी मारिया है आप भाद मुझे अमरिया मरण काल का त्रास न मरिया जोसदा हमारे पछाण श्री अस तुझ जो कद हो रक्षा राख लिहो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दोस्तन के हंता

जम कालो सब जगत बनायो देव दैतो जचन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जन अब सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोहबत कियो। कट कट के

जब कर करत हो कब हो तुम मैं मिल तो दे थर सब हो जीते बदन श्रेष्ठ सब तर आप अपने बोझ चार तुम सब ही तेरे तन आलम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीला नाद संभ ताका मूड चारद पेदा जाको पेवन पावद बेदा ताको कारू पाहन अनमानत महामूल कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध जीती बरनत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिन सजा ब्रह्म संसारा एक रूपानूप स्वरूपा रंक पयो राम कई भूपा अंड जजे रजो से तज किनी ओत भुज खान बाहर रच दीनी कह पूर्ण राजा हो बैठा कह सिमट भयशंकर कैठा सिगिरि श्रेष्ठ दिखाई अचम भव आदि जुगाद स्वरूप सजम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दोट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्त हो जो तब सरणी परे तिनके दोट दुख हमरे पुरख जम पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो

पाई को कह चाओ पाई संबत 17 सहस पण जाय अर्ध सहस पण तीन कह जाय भाद्रव सुदी अष्टमी अवारा तीरस तद्र ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र उपख्यान त्रियं चरित्रई मंत्री पूप संबादे 405 चरित्र समाप्त मास्त सुभ मास्त अपनी दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ रख मोह मन क्रम बचन बचारो चौपाई मैं न ग्रेसा प्रथम नाऊ केशन बेशन कभी न थाऊ कान सुन

विकस माय दोहरा जब आयस प्रभ को पयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब कहत सुनाए का बात दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सुनने आए पंत चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहंगे मुक्त फण पावहंगे भगवंत दोहरा कानपुर की देह मो कोटक बिशन महेश कोटिंदर ब्रह्म किते राम सच करोर जले सं दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाकत नेत सुर्ग बास राग बर करा सगरी पुरी समेत जो कथा सुन अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै विष्णु भगत की फल होई आदमी अच्छ कर कोई सम्मत सत्रह सच पचावन हड़बदी प्रथम सुख दामन ता प्रसाद कर गर्क ग्रंथ सुधारा पुल परी लहल सुधारा दोहरा

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिति मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परियाऊ शब्द गा बड़े आयाऊ शब्द होता गाऊ हरि के रामन जिनी मसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया।

नितिन त्रकोर थारो तम संसार चरण लग दरियाए सब नानक ब्रह्म प्रसाद श्लोक महला पंजवा।

माहे सुन कै जम के दूत नाय तेरा छंड जाहे पाव दिल बिखम सगा गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुल गुण गोविंद गाहे सब सहनो कृपाल संभाले साह साहे मृथा को न जाए जियावत जाहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर

जिस से मरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन हर उपदेश दे सब श्रेष्ठ सवारी, नित जपे हो संत हो राम नाम, पौ जल बिख तारी। गुर पूरै हर उपदेशया, गुर विटड़ हो सद बारी, नित जपे हो संत हो राम नाम, पौ जल बिख तारी। गुर पूरै हर उपदेशया, गुर विटड़ हो सद बारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आप साला ही साला ही इति सुत में पाया नदिया अत वहां पर वह समुद्र जानिया है समुद्र साह सुल्तान ग्रह से तीमाल तल कीड़ी तल रहो बनिजे तस्मन होना विचरे अंत न शक्ति कहन अंत अंत न करण देन अंत अंत न वेखन सुन अंत अंत न जापै क्या मन अंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण कीती बिरलाही ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाण कोई बहुता कही या बहुता ही वड्डा सा उच्चा था ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव ते बड़ उच्चा हुआ कोई सुचे को जाण सोए जे बड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी धातु बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तुम तमाए किते मंगह दूध पार किते अकलत नहीं विचार किते खप टुट वे कार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाही किते अदुख भूख सदमान एह पे दातेरी दातार बंद खलासी पाड़ै होए हो आख न सकै कोई जी को खाए को आखन पाए ओह जान जीतिया मोह काए आपे जाने आपे जे आख से के जिसने बख्शे सिफत सलाहा नानक पातशाही पातशाह मल गुण मल व्यापार मल व्यापारी मल भंडार मलिया वह मल्ला जाहि मल भाई मल्ला समाहे मल धर्म मल दीवाण मल तल मल प्रवाण अमल बख्शीस मल निशान मल कर मल फरमान मल्लो मिले अखे न जाए अख अख लाई अखे वेद पाठ पुराण अखे पड़े क्रब खयान आख ब्रह्मे आख इंदो आख गोपीता गोविंदो आख ईश्वर आख सिद्धो आख किते किते बुद्ध आखे दारवे आखे देव आखे सुर नर मंडल सेव किति आखे आखन पाहि किति कहे कहे उठ जाहे इति किति होर कृहिता आखन कह के जेवण भावे तेवण होए नानक जान साचा सोई जी को आख बुल बिगाड़ो तल किया सरगा वारा गावार सू दर के हसु करके हजत मै सर्व समाले वाजे नाद अनेका संखा किति बावन हारे किति राग परिस्यो कहिन किति गावन हारे गाव है तुहनो पावन पानी महंत गाव राजा धर्म दवारे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहस दस वारे गाव हिंद दसन बैठे देवत्या दा नाले गाव सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गाव मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गाव जोध महामन सूरा गाव खण चारे गाव खंड मंडल भंडाल कर कर रखे धारे से तदनो गाव जोत भावन रते तेरे भग तर साले होर कीते गावन से मैं चेतन आवन नानक अविचारी सोई सोई सदस साहिब साचा साची नाई ऐ पियो सी जान जासी रचना दिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया दिन में पाई कर कर विखा कीता अपना जब तिसी बड़े आई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन जाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह मे भूते खिंथा काल कुवारी काया जुगडंडा प्रतीत आई पंथी सबज भाती मन जीता जग जीत आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेसो भुगत ज्ञान दया भंडारण कड़कड़ बाज नाद अपनाथ नाथी सब जा की रेद सज अमरा साध संजोग विजोग जो कार चला वह लिखे या वह भाग आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेसो एका माई जुगत वे आई चेली प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण जिब तिस भावै तिव चलावै जिब हुआ फुरमाण ओह वेखै ओ न नदन आवै बहुता एह वडाण आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस आसन लो लो पंडहर जो किछ पाया सो एका बार कर कर विखै सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश स आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख हो लख वै लख वीस लख लगे आखी एक नाम जगदीश त्राह पत पबिया चढ़िया हो अकीस सुन गल्ला आकाश कीटा आई रीस नानक नगरी पाई आए कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर च पहना जोर जोर न मंगण देना जोर जोर न जीव मरण जोर जोर न राज मन सोर
ਜੋੜਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੂ ਜੋੜਨਾ ਜੁੜਤੀ ਛੁੱਟਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਵਿਕਾ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨਿਜਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੂ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲੋ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲੋ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰੂ ਤੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦੀ ਕਣ ਪੁਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪਾ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸ਼ਨਤਰ ਕੀਤੀ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸ਼ਨਤਰ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪਰਮ ਕੇ ਵੇਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨ ਚੰਦ ਸੁਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਬੇਸੋ ਕੀਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਅਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤ ਵਿੰਦ ਕੀਤੀ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਲੋਤ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਬ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾਣ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛਾ ਪਿਛਤਾਏ ਤਿਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਾਤਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜ ਤਿੱਥਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥਾ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਤਿੱਥਾ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਨ ਠਾਵੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਕਾ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥਾ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰ ਅਨੰਤ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥਾ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਭੰਡ ਜੀ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿੱਥਾ ਨੋ ਅਨੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਵਤ ਵਕਾਰ ਵਿਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰੂ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਆਰ ਅਹੜ ਮਤ ਵੀਰ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਲਾ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਮ੍ਰਿਤ ਤਿੱਤ ਢਾਲ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ

अकेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन नाम ते आया

सदायंग संगी अपंगंग निपुते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जो के सूर सुरार्दने शब्द सुधाध को संसमोहित मति के सारे ही देश को देख रहे मातो को न देख प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा होते कृति बन कृति के माति मतंग दरे जर संग अनुपातंग सरंग सवारी कोट तरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारी पारी भुजन के पू फलि बेद न्याम शीश न जात बचारी इते पाए तो कहा पाए भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे जीत पिराए सब देश निशान को बाजत ढोल मृदंगन गारे गुंजित गुण ज्ञान सुंदर ही सत ही है राज हजारे पूत भविख भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजमो नेम अनेक पसीखाए वेद पुराण ते पुराण जमीन जमान समान के पिखाए पवन आहार जति जतारो सब ऐसो बिचारो हजार दिखाए श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक लिखाए शुद्ध सपाहा दुरंत दुबाहा सो सासना दुर्जान दलांगे भारी गुमान परि मन मै कर पर्वत पंख हलैना हलांगे तोर अरीर मरोर मुआसन मत मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेनो त्याग जहान दान चलांगे बीरू पार बड़े बिरयारो अवचारा सार की तार की चार पछैया अवचारा सार की तार पछैया तोर देश मिले जनवासी मातिक जान के मान मलैया गाड़ी बिड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहब श्री साहब को सब नायक हो जा चुकन एक से एक दवैया दानव देव फणिंदर सात रपूत वे पान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थपेंगे पुन प्रतापन बार जा तुन पापन के बहपुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिर जाग सत्तर सब लोग चपाएंगे मानव इंद्र के दिन रात पौ दौन तलो को राज करांगे कोट स्नान गुजात गुदान अनेक स्वयंबर साध बरांगे ब्रह्म महेश्वर बसन सच्ची पात अंत पस जम फास परांगे जे नर श्री पात के प्रस है पागो ते नर प्रेरणा देह तरांगे कहा पयो जो दो लोचन मूल काय बैठो बत्यान लगायो नाथ प्रेमी सास नंदन लोक पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुनो सुबह जन प्रेम की उतनी ही प्रपायो काहू न पाहन पुर धरियो सिर काहू न लिंग गरे लटकायो काहू न क्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछा हको सी सुनवायो को बतान को पूछत है पासो को मृतान को पूजन तायो को क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूछत है पासो को मृतान को पूजन तायो और क्रिया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बात बेरती चौपाई कमरी करो हाथ दैर छाव पूर्ण हो चित की छाव तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दृष्ट सब तुम काबू आप हाथ दै मह बचाबो सुखी बसै मोर परवार आओ सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई उड़न त्याऊं जो भर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन छत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मरे आए मरण काल का त्रास मरे आए हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री असतो जो जो करे हो रक्षा
ਰੱਖ ਲੇ ਹੁਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੀ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੁਮ ਤਾਂ ਤਮਹੁ ਪ੍ਰਚਤਰ ਦਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਰੰਗ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਅਵਤਰੰਗ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾਕੀ ਆਤਮਾਸਾ ਜਪਣ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀਓ ਬੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ ਜਪਣ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹਤਾ ਹਮਾਰਾ ਜਪਣ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਤੋ ਜਛਣ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਮ ਤੇ ਕਹਿ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸੁਵਾਰੀ ਸਿਵਕਰ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਫਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਪਜ ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਰਾਉ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤਵ ਦੇਹ ਪਾਰਾ ਜਬ ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ

संसार एका रूप अनुपस रूप रंग पयो राव कैपूप अंडज जे रज से तज किनी ओत पज खान बाहर रात दिनी कह फूल राजा हो बैठा कह सिमट पय शंकर काठा। शीघ्री श्रेष्ठ दिखाई अचम भव आदि जुगाद श्रू सजम भव रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग हरो दोष जिते उठवत उठवाता सगलम लेश करो रण काता। जे अस तोजो तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तह मरे पुरख जम पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकल है रचा हुई ताला दुष्ट रिष्टर तुम काला कृपा दृष्टम जाह हर हो ताकि ताप मनक में हर हो। हरे दिशे कर्म सब हो।

दो तेरा कड़क केत में शरण तिहारी आप दल हो बारी सर्व ठार मोह हो सहाई दोट दोप ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बक्स कर देह को हरता दोट दोखियन को छ करता श्री अस्तो जीव जो पै दयाना पूर्ण करा ग्रंथ तत्काना मन बांछत फल पावे सोई दुख मत व्यापत कोई अड़ैल सुनै गुंग जो जाहि सुन पावई सुन मूल चित लाय चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट न तन नर के रहाय हो जो जाति एक बार चाव पाई को कह चाव पाई संबत सत्रह सहस पण जाय अर्ध सहस पण तीन कहि जाय भाद्रव सुधि अष्टमी रवा राव तीरस्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सबैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं अन्य राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानो सिमरत शास्त्र वेद सबाई बहु भेद कह हम एक न जाने श्री उस पार कृपा तुमरी कर मैं न

पवित्र माता पिता कटाम सात संगत संभाया कहन दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन मसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहजा उपजा मन सहजा सा सरना जाए न जाए सहसा कृष्ण निमराह कर्म कमाए सहसा जिय मणि रहाए कृष्ण निम धोता जाई मन तो वह शब्द लागो हर सोर हो चितलाई कह नानक गुर प्रसादी सहज उजाए सहस उजाए जीहो मैं निबारो निर्मल बारो निर्मल जीओ ता मैं ले इतनी जन्म जुवा हारिया इतना वड्डा इतना वड्डा रोग लगा मरण मन हो में सारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनह नाही फिर जो बेता लिया कह नानक जिन सत जिया कूड़े लागे तीन जन्म जुवा हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोई पहुँचा नाही मनसा सस माणी।

तन है। इरे जित चढ़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा इह असमाऊ शब्द सिती मन मिलया सच्चा नाया पाओ। आपे हीरा रत्न आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रत्न है हीरा जित जड़ाओ। सेब सकत आप उपाय कह करता आपे हुकुमरताए हुकुमरताए आवेखा गुरमुख सह बुझाए तोड़ी बंधन हुआ मुकतो शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुआ एक सिन लबलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाबी चार दे तथा सारण जानी तथा सारण जानी गुरु बाजो तथा सारण जानी। तेहे गुणी संसार भ्रम सुत्ता सत्यारायण मेहानी गुर कृपा ते से जन जागी जिन हर मन वस्या बोल अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए जिसनु आंदन हल न गए जागत रहन विहानी। माता के उदर में है प्रतपाल करे सो क्यों मन हम सारिया मन हो क्यों सारिया ए वरदाता जे अगन मह आहार पहुंचावे उसनु केहो कोह न सके। जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए। कह नानक वरदाता सो क्यों मन हम सारिया जैसी अगन उधर मैं है तैसी बाहर माया माया अगन सब को जी ही करता खेल चाया। जाओ तिस भाणा जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा।

हर आप मुल्क है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए कि सब टहो रहे लोक मिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिरसों पिए, विच होया पुजाई कहना जिसदा जीओ तिस मिल रहे। हर वसै मन आई हर आप मुल्क है भगत न के नानका, जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन मन जारा, हर रास मेरी मन मन जारा। सतगुर तेरा जानी हर हर नित कह रसना, कह कछु न जानी चित जिन कहर लया माया। बोल पैरवाणी कह नानक सतगुर

निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सभं गुरु प्रसाद असमल पहला श्लोक का नार श्लोक मल्ले पहले के लिखे टंडे सराज कितनी श्लोक महला पहला बल हरि गुरु अपने दिव हरि सदवार जिन मानस ते देवते की करत न लागी।

0: लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्चे तेरे सिर्फ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई दा वड्डा नाम वड्डी वड्डी।

वेद विस्मादरु विस्माद रंग विस्माद नंगे प्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिडे विराणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साधल के प्राणी

गवाईया जे लोड़ चंगा अपना कृपना ने सदाई है जे जरवाना पर हर जर विस्कृति आई है को रहना परिया पाई है।

अपार तीर्थ न हो चा पूजा गुरुवास बह कर जोगी सुनते हम जीते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्य मन संतोख पूजा देने के विचार दीदी मंगे से सगुण सुख करे।

0: कछु पन गा करे
1: सच ता पर जानिया जाया तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ कर।

मसकत खा नानक दे मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

त्रिलोचन सदना सैन तर कह रवदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे।

गुरपैरा जाके हृदय बसे गुरपैरा गोबिंद चरणन को बल जाओ गोबिंद चरणन को बल जाओ घर घर प्रणाम चित चरण नाम।

0: जन विश्राम रहो
1: प्रभु के सिमरन गर्भ नाम बसा
0: प्रभु के सिमरन दुख जम न स
1: प्रभु के सिमरन काल भर हरे
0: प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे
1: प्रभु सिमरन से कर बेगा न लागे
0: प्रभु के सिमरन आन दिन जागे
1: प्रभु के सिमरन भाव न व्यापे
0: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभु के

0: पादे जना की वर्त नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम गुरे जन कोट
0: हर जस कार तुसान दिन रात
1: हर रोख दसाद मात
0: हर जन के हर नाम नदान
1: हर रंजन की नुदान
0: मंत्र रंग रते रंग एक
1: नानक जन के बिरत विवेक
0: हर का नाम जन को मोत जगत
1: हर के नाम जन को त्रिपद पुगर
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम द्रपद का परे न पंग
0: हर का नाम जन की बड़े आई
1: हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भूल जोग
1: नाम द्रपद कछ नहीं बेओ।

चल पुरख में पुरख प्रधान आस को जाने नीचा जाका मन होए सल की दीना मन अपने दे बुरा मटाना सुख दूख जान समस्त चेता।

0: मन करावन हार स्वामी
1: सगल कटा के अंतर्जामी
0: अपने गदवा जान हो आपे
1: अपन संग आप रवाते
0: तुमरी असर तुम ते होए
1: नानक अवर न जान सोए
0: सर्व धर्म शेष धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया
1: सत्संग गुरमत मलिया
0: सगल उदम मैं उदम परा
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सर्व वाणी मैं अमृत वाणी
1: हर को जप

0: दस वासु ले पासे पावे
1: एक बस कारण भी फोड़ दबावे
0: एक पीना दे दस बुहर ले
1: तो मुड़ा को कहां करे
0: जे ठाकर से ना ही चारा
1: आंखों की जे सद नमस्कार
0: जाका मन लाग गावरा मीठा।

0: साहिब सदा दयाल
1: मन के पात माया के हेत
0: प्रभुवत जान हेत
1: मेर की साया से रंग लावे
0: बिनसे ओ मन पछताए
1: जो दिसे सो चालन हार
0: पटरियो ते अंध अंधार
1: पटाऊ से मजो लावे ने
0: आको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की बरी सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कदम सवाया
0: मिथ्या हमें मन तमाया
1: मिथ्या राज जो तन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रात हस्ती असो वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पे घस्ता
1: मिथ्या त्रो मो मान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: अत पास साध की शरण
0: नाग जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या शर्म पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त गर्भ कोरिए
1: मिथ्या नेत्र पेख तो पातर पांदो
0: मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
1: मिथ्या चंद पर बकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभाए
1: मिथ्या तन नहीं पर अकारा
0: मिथ्या भाव से बेकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सब पाए

0: ये बरसा शक्ति अमृत का है,
1: इस ठाकुर को रख मन माए।
0: ये बरसा सुगंध तन लावे,
1: इसको सिमरत रंग
0: गावे। ये बरसा भय सुख मंदर,
1: जे ध्याय सदा मन अंदर।
0: ये बरसा गृह संग वसना,
1: आपे सिमरो तिस रसना।
0: ये बरसा रंग रस भोग,
1: नानक सदा ध्याये त्या मन जोग।
0: ये बरसा पाठ पूनम भंडावे,
1: इसे त्या कद अवर लाए।
0: ये बरसा सुख सोई सुजय,
1: मनाट पैर ताका जस गावे।
0: ये बरसात तो सब को माने,
1: मुक्ता को जस रसन बहाने।
0: ये बरसात तेरो रहता धर्म,
1: सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म।
0: राव जी जब दर गए मन पावा,
1: नानक पाद से तीर कर जाए।
0: ये बरसात रोग कंचन देही,
1: लिव लावो तिस राम स्नेही।
0: ये बरसात तेरा ओला रहता,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहते।
0: जय बरसाते सगल सिंध टाके,
1: मन चरनी पर ठाकुर प्रगटावे।
0: ये बरसात तुझको न पहुंचे,
1: मन सास सास सिमरो प्रभु छे।
0: ये बरसात पाई गुलाब दे,
1: नानक ताकी भगत करे।
0: ये बरसात अमुख परी जय,
1: मन की सिमरत क्यों आलस की जय।
0: ये बरसात आसो हाथ सवारी,
1: मन की सब को कबू ना बिसारी।
0: ये बरसात बाग मेलख तना,
1: ठाकुर ही प्रभु अपने मना।
0: जन तेरी मन बंत मनाई,
1: उठ बैठ
0: तिहे त्याए जो एक लख है, जय प्रसाद करे पुण्य बहु दान। ये प्रसाद तू चार बिहारी, ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सिमरो सदा अनूप।
0: ये प्रसाद तेरी निकी जात,
1: सिमर सदा दिन रात।
0: ये प्रसाद तेरी पत रहे,
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
0: ये प्रसाद सुने का नाद,
1: ये प्रसाद एके विस्माद।
0: ये प्रसाद बोले अमर रसना,
1: जय प्रसाद सुख जय बसना।
0: जय प्रसाद बोले अमर रसना,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले।
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सह समावे।
0: ऐसा प्राप्त आव अर कत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।

0: साधु के संग ना कभी तो आवा
1: साधु के संग सदा सुख पाए
0: साध संग वास्तव को चल रहे
1: साधु के संग अजर सह
0: साधु के संग बसे थान उच्चे
1: साधु के संग महल पहुंचे।

0: चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का हित नाओ
0: जो भाव का
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रकाश हो
0: जैसे तरियो पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत समान हो
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
0: मन बने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे ब्रह्म ज्ञानी सर की दीना ब्रह्म ज्ञानी की सौर
0: मया ब्रह्म ज्ञानी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा संघर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी की

0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल हर हार ब्रह्म ज्ञानी का एक तो रंग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी सदा सुर जागत ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चंतो ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी का दास भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पे दो ब्रह्म ज्ञानी का कथन आखर ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी बहुत ज्योत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ।

0: भगवान की टहल करे नित नीत हर के चन हर देव साव
1: भगवती
0: पांडा जो मन प्रबोध राम नाम सार रस पीवे हर की कथा हर देव साव वेद ग्रंथ सिमर बुझे मूल क्यों वरना कहो देव देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो जो जपे तिसकी गत होए कर कृपा अंतर तारे सर्व रोग औख नाम काहु जोत कितै ना पाइए धर्म जिसके मन भाव राम का निवास आत्म राम दहिंदर ही आया सदा नेट नेट हर जान अपने दास को आप कृपा करे सगल संग आत्म दास प्रभु की आज्ञा आत्म तावे पैसा हरक तैसा सोग तैसा स्वर्ण तैसी ओ माटी तैसा मान तैसा मान
1: तैसा रंग तैसा राजान
0: जो वरताए साईं जोरता।

0: कई कोट भय पुजारी,
1: कई कोट आचार्य व्यवहारी,
0: कई कोट भैरी हवासी,
1: कई कोट ब्रह्म उदासी,
0: कई कोट वीर केश होते,
1: कई कोट तपी सर होते,
0: कई कोट आत्म ते अंतारा,
1: कई कोट कब का विचारे,
0: कई कोट नाम तो नाम ते आवे,
1: नानक करते का अंत ना पाए,
0: कई कोट भय मानी,
1: कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर,
1: कई कोट अभी आत्म निकर,
0: कई कोट पर दर कहे रे,
1: कई कोट पर
0: दुख ना करे, कई माया है,
1: कई कोट पर देश प्रमाए,
0: ये तो ना वो तो लगना,
1: नान करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रसोगी,
0: कई कोट पांकी सरो पाए,
1: कई कोट पाथर बिरख नि बजाए,
0: कई कोट पवन पानी व शांतर,
1: कई कोट देश को मंडल,
0: कई कोट सस्य सू नक्षत्र,
1: कई कोट देव दानव इंद्र से छत्र,
0: सगल सामग्री अपने तारे,
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे,
0: कई कोट राज तामस साधक,
1: कई कोट देश प्राण सिमरत अरसा सत,
0: कई कोट की रतन समंदा।

0: कई कोर पताल के वासी
1: कई कोर नक्षत्र के निवासी
0: कई कोर जन्म है जीव है मरे
1: कई कोर भोजनी फिरे
0: कई कोर बैठ दी खाए
1: कई कोर पाले तक पाए
0: कई कोर किए तनवान।

0: अंतर हुए ज्ञान प्रकाश हो,
1: स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रत एक रंग
1: से पार ब्रह्म के संग
0: यो जल में जल आए कटाना
1: ज्योति संग ज्योत समान।

0: जिसके अंतर राजा महान
1: हो स्वान
0: जो जाने मैं जो वनवंत आस को कर्म वत कहावे तन भूमिका जो करे गमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे तनवंता हुए कर गर्भावे
1: सम्मान का संग न जाए
0: और लश्कर मना ऊपर कर

जो यकीनों सो अपने रंग दूजे देखे करे विवेक मरे ना मन से आवे ना जाए।

निहारो मन में आ मन माहे मन में आ मन अपने माहे सत सत सत भाव स्वामी सच सच सत सब कीना भला भला भला दे रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

0: जाकट
1: संत के दुखन जाते नहीं छुटे
2: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
2: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन सोबाते हीन
2: संत के हते को रखे ना कोई
1: संत के दुखन धान प्रश्न होए
2: संत कृपाल कृपा जी करे
1: संत संबिंदक भी करे
2: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन राग जुले
2: संतन के दुखन

0: संत का निंदक परमेश्वर हमारा,
1: संत का निंदक राज तेहीन,
0: संत का निंदक दुखिया अरलीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग,
1: संत के निंदा दुख में दुख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा अपवित्त।

0: संत के दोखी को नाही ठाओ
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए
0: संत के दोखी अध बीज ते टूटे
1: संत के दोखी के काज ना पहुंचे
0: संत के दोखी को उद्यान फरमाइए
1: संत के दोखी उजड़ पाइए।

संत कदो की सदा सहकाई है, संत कदो की पूजा नया सा, संत के दुख न त्रिष्ट है कोए, पया कीर्तन मेट है कोए, सब कट किसके।

0: किसका हुक्म बोध सुख होए,
1: किसका नाम रखंत करोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, उस्तत मन में कर निरंकार,
1: मन मेरे साथ व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सेला कर ले जियो,
0: नैनो पेक ठाकुर का रंग,
1: संग बिन से सब संग,
0: चरण चलो बार गोविंद,
1: पाप जपिए हर बिंद,
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: कर गए नानक उजल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माहे,
1: सदा हर के गुण गाए,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: तनवंत गनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा जानो ते सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: तुतकियो सो जी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मान्या,
1: तिने निरंजन जानिया,
0: गुर प्रसाद आपन आप सुझे,
1: इसकी जानो कृष्णा बुझे,
0: साध संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग त्यो हर

0: जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख,
0: जिसको हर प्रभु मन चित आवे
1: संत सेला नहीं डुलावे,
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सेवक को किसते डरे,
0: जैसा सा तैसा दिष्टाया
1: अपने कारण में आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सीजया
1: सात सब पूजया,
0: जब देखो तब सब किछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई असूल,
0: मैं किछ जन्मे मैं किछ मरे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल मैं आप
1: अनेक जुगत रस्थापे उठाप,
0: अब नासी नाही किछ खंड
1: अंतारे ओ ब्रह्मंड,
0: अलख अपे पुरख प्रताप
1: आप जपाए ता नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
1: सग संसार उदय तिन मंत,
0: प्रभ के सेवक सगल उदय।

0: सत बचन साधु उपदेश
1: सते जनता के हृदय प्रवेश
0: सत निर्तज बुझे जे कोए
1: नाम जपता की गत हुए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्टि सुकर ले हार।

0: चरण सत सत परसनहार,
1: पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेखनहार,
1: नाम सत सत ध्यानहार,
0: आप सत सत सब धारी,
1: आपे गुण आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत प्रवक्ता,
1: सुरत सत सत जस सुनता,
0: बुजन हार को सत सब होए,
1: नानक सत सत

0: बचन करन आका ने
1: संतों का तम पकियाने
0: पूरा गुरु अख्यो जाका मंत्र
1: अमृत देश के खे हो संत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस रह मिलाए
0: जे बा एक उस्तत अनेक
1: सात गुर पूरन भेद
0: काहू बोल न पोचत प्राणी
1: गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निरा हार निर्वैर सुखदाई
1: की कीमत किने ना पाए
0: अनक भगत बंधन नित करे
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सदबन हारी सतगुरु अपने
1: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपे
0: ए हरस पावे जन कोए
1: अमृत पीवे अमर

पाप सब मीत बिसारो करण कारण सो प्रभ समरथ ए धन संचो हो वो भगवंत एक आस रखो मन माहे।

0: अपावन छुटन हरे
1: सासत बेद बिचारे
0: हर की भगत करो मन लाए
1: पंचत नानक फल पाए
0: संगन चालस तेरे तना
1: क्या लपटावे मूरख मना
0: सुत मेत कुटुंब अरबंता
1: कौतुम कवन सनाता
0: राज रंग माया विस्तार
1: इंते कहो कवन छुटकार
0: अस हस्त

0: आपकी दृष्ट महासुख होए जिन चाख्या से जन तृप्ताने सुपर परे प्रेम रसरंग परे शरण आन सब त्याग बड़ भागी जपया प्रभ सोए सेवक की मनसा पूरी पई
1: निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु यो दयाल
1: सदा निहाल
0: मंदन काट मुकत जन भया
1: मरण दूर।

0: जन्म का टूटा गाड़े।
1: गुरपुरे तत एह बुझाया
0: अपना नानक जन त्याया।
1: साजन संत करो एक काम
0: नाम त्याग जपो हर नाम।
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो अवरे नाम चलावो।
1: भगत पाए तरी है संसार
0: बिन भगती तन होसी सार।
1: सर्व कल्याण सुख निदनाम
0: बूढ़ जाय।

0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, अनेक राज भोग बढ़े आए,
1: नाम की कथा मन पाए,
0: वो भोजन का पर संगीत
1: रसना जपति हर हर गीत,
0: पलिस करनी सो बात तलवंत
1: बसे पूरन गुरु।

0: पर्व के वलतनी जब एक है हर अगम अपार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए जब आप अपनी ज्योत धर अपन चलत आप कर लय हार अविनाशी सुख आपन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे आपन आप ही अचर जा
1: रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख।

0: पुरुष परम पद पाए।
1: इससे ऊपर नहीं विचार,
0: जाके मन बसिया निर्विकार,
1: बंधन तोड़ पे निर्वैर,
0: अंधन को जय गुरु के पैर।
1: यह लोक सुखी है पर लोक सोहेले,
0: प्यार प्रभु आपे मेले,
1: साध संग मिल करो आनंद,
0: गुनाओ प्रभु परमानंद,
1: राम नाम तत करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उदार।

0: जाए। निरभउ जपे सकल भउ मिटे,
1: कृपा ते प्राणी छुटे।
0: जिस प्रभु राखे तिस नाहि दुख,
1: नाम जपत मन

0: दृष्ट
1: दर्शन पेखद उदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रदान।

0: सब करम
1: संत जना सुने सो बचन
0: व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिस की है रहत
0: सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मन
0: करन करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बार पी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रगटे सगली उत्पाद

0: अलिप्त हो रहा है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए इसते होए सो नाही बुरा। आप कल भला करतो तत्नी की
1: जाने अपने जी की।
0: आप साज तारी सब साज
1: अपन संग्राज
0: ताकि गतमित कहीं ना जाए। किसका किया सब परवान
1: गुर प्रसाद नानक हो जान।
0: जो जाने तिसदा सुख होए
1: आप मिलाए ले प्रभ सोए।
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुख जिस रे भगवंत।
0: तन तन तन जने आया
1: इस प्रसाद सब जगत तराया।

0: बेनती करो
1: करो
0: हर तन के परले हो भंडार
1: गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो चित चितवो नारायण
1: रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: पंजन पूरन के

0: गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: दान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: होवे आप न जान
0: हर तन काट चले जन सोए
1: नानक जिसे

0: पदार्थ कमल प्रगास
1: सरते मर सकते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: दृष्टेता
0: यह फल जिस तिस जा